साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574410, दैट्स 8574 8410। साउथहॉल ट्रेवल, आटो पटेल।

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: दिस इज लाइकर रेडियो।

0: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
1: यू मीन सफल ट्रेवल?
0: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
1: एक बार आजमाइए जरूर।

0: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज लंदन में धूप छांव वाला मौसम रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्रीज रहेगा। मैनचेस्टर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री तक जाएगा और मिडलैंड्स में 22 डिग्रीज के आसपास रहेगा।
1: फॉर स्पेशल राइट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथ ओल्ड ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। Laika Radio, Ritu Sharma.
0: Yes, good morning, नमस्कार, स्वागतम। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आपसे लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका साथ देने के लिए और हमेशा की तरह आपको सुनवाने के लिए ढेर सारे क्लासिक्स।
2: लाइका रेडियो,
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Laika. Ritu Sharma live on Laika Radio, Greater Manchester.

0: लीजिए दो आपके फेवरेट गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी पहुंच रही है मेरी आवाज, जहां भी कहीं हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और उम्मीद है कल का दिन आपने बहुत ही अच्छा बिताया होगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते। इस शो में आज 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी और ऐसे ही आपके गाने पसंद के, कुछ मेरी पसंद के गीत प्रोग्राम में बजते रहेंगे। साथ ही साथ आज आप जोड़ी नंबर 1 सुनते हैं वो भी सुनवाऊंगी, 3 वर्ड्स गेम भी होगा और बजेंगे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी। बस आप मेरा साथ देते रहिए और आप दे रहे हैं, ये मुझे आपके मैसेजेस बता रहे हैं तो उन पर भी मेरी नजर जाएगी। लेकिन फिलहाल एक और गीत सुन लेते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 130 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर याद रखिए हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: माधुरी दीक्षित के गाना चाहे कोई भी हो, उसे देखने में मजा आता है क्योंकि जिस तरह से वो डांस करती हैं, ऐसा लगता है जैसे गाने में चार चांद लग जाते हैं। हम आपके हैं कौन फिल्म से था ये गाना जिसमें आवाज थी लता जी की, और अब मैं आपको उनकी छोटी बहना यानी कि आशा जी की आवाज में सुनवाने वाली हूँ अगला गाना।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: पर आगे बढ़ने से पहले मैं चार लाइनें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी और आप सबको इनफैक्ट डेडिकेट करना चाहूंगी जिसे शबीर जी ने हम तक पहुंचाया है, लिखकर भेजी है। और आप लिखते हैं कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है, लबों पे मेरे बस यही फरियाद आती है। जब भी मुझे याद तुम्हारी आती है, लबों पे मेरे बस यही फरियाद आती है। जिंदगी में खुदा हर खुशी दे तुम्हें, हमारी तो हर खुशी आपकी खुशी के बाद आती है। क्या बात है, कहाँ से लाते हैं इतनी खूबसूरत लाइनें आप। थैंक यू बड़े ही प्यार से साथ देने के लिए। और आज तो आपने कहा है कि आज आप अपने फ्रेंड के पपी को लुक आफ्टर करने जा रहे हैं जिसे आपने ट्रेन किया है एंड बहुत क्यूट है, आपने उसकी फोटो भी भेजी है जिसका नाम है मीशो। तो भाई क्या करें, मीशो को भी हेलो कह दे। एनीवेज आप उसके साथ अच्छा सा समय बिताइए और आपने जो प्यारा सा मैसेज लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड आपके साथ साथ राजकुमार सुबह की प्यार भरी राम राम सभी को पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी मेरी राम राम। थैंक यू संध्या भाव सर, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया इतनी जल्दी। अरे 10 बज गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। रितु तू यहाँ बैठी है तो क्या हुआ, बाकी लोग तो घर में हैं। मजे के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं भी सोच रही हूँ कि एक कप चाय पिया हूँ थोड़ी देर बाद जाके। लेकिन सुरेखा जी थैंक यू, आप हमारे साथ हैं और कहती हैं कुछ सुनाई नहीं देता, क्या हो गया। ओह रीस्टार्ट करके फिर से आप उसको शुरू कीजिए, ऐप को, कभी कभी हो जाता है सिग्नल की वजह से, है ना। हमारे साथ है तोची जी, सुनील कपूर जर्मनी में हमारे साथ है और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग रितु जी, वेटिंग फॉर यू ऑन संडेज एंड ऑलवेज वांट टू लिसन ओनली यू। ओह क्या बात है, लवली, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। योगेंद्र जैन जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। वसंत राणा जी रेडिंग में हमें सुन रहे हैं। वियाना से अनिल सोनी जी है। मिसेस पेकी चियांग हमारे साथ है। क्रोइडन से महेंद्र पटेल जी हैं, थैंक यू। एंड ये कौन है जिन्होंने अपना नाम लिखा है क्या, नहीं लिखा, लो अरे हाँ इनका नाम मौसुमा जी है। स्वागत है मौसुमा जी आपका। बेल्जियम में प्रीति जी है, अर्जुन जी हमारे, शेखर आनंद जी हमारे साथ है, राजेश जी हमारे साथ है, थैंक यू। काम के साथ साथ आप हमें सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फारूक मोहम्मद जी शुरू के दोनों गाने आपको पसंद आए, स्वागत है। सुनीति जी स्वागत है। टोरंटो से उल्लास हमारे साथ है। पटनी से निवेदनी जुड़ी है। शरफून हमारे साथ है जो आजकल राखी की तैयारी में बिजी है। हाँ भाई रक्षाबंधन आने वाला है, भाइयों को आपने राखी वाखी भिजवा दी कि नहीं। त्योहार आने वाला है सावन के महीने में, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। सो दिव्या हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, रोशनी जी, मालती जी एंड ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी जो कि भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए और बाकी के नाम लूंगी लेकिन फिलहाल ये आशा जी के आवाज में गाना कह रहा है अब तो बजा दे रितु। चलिए सुनवाती हूँ और ये गाना मेरी ओर से आप सबके नाम का।
1: Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ब्यूटीफुल गाना ओपी नैयर का म्यूजिक मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म। और इस गाने को आपने सुना आपके मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क से, जहां इस समय आपके साथ है ऋतु शर्मा। गुड मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
0: और इसी जमाने की एक हीरोइन है जिनकी की आज है बर्थडे। बताइए जरा कौन है? नहीं पता? अरे वो पड़ोसन, आपके पड़ोसन नहीं, किशोर कुमार और सुनील दत्त की पड़ोसन। हाँ समझ गए ना? यस, सायरा बानू की बात कर रही हूँ। आज सायरा बानू का बर्थडे है और आज वो 82 इयर्स की हो गई है। उनका एक गाना है जो हम अक्सर ही और लोगों के जन्मदिन पर बजाते हैं। अब क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो सोचा उनका गाना क्यों ना उन्हीं के जन्मदिन पर बजाया जाए और आप सबको सुनवाया जाए।
2: ये है
3: Like a Radio,
4: classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Radio.

0: तो लता जी की आवाज में फिल्म आई मिलन की बेला का ये गाना डेडिकेट करते हैं उसी फिल्म की हीरोइन यानी कि सायरा बानो को, जो आज अपनी हैप्पी वाली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शी इज 82 टुडे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और जानते हैं सिर्फ 17 साल की उम्र में, जब सिर्फ 17 ईयर्स की थी तभी इन्होंने शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था और सबकी उस समय पहली पसंद बन गई थी क्योंकि जंगली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और उसके बाद तो इन्होंने कुछ बहुत ही यादगार फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पड़ोसन, कौन भूल सकता है उस फिल्म को, पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, जुग्गे आसमान जिसमें राजेंद्र कुमार उनके साथ थे और जॉय मुखर्जी के साथ शागिर्द, वो है जरा खफा खफा, क्या पॉपुलर गाना है। कोशिश करूंगी कि कुछ और गाने उनकी फिल्मों के आपको सुनवा सकूं, लेकिन आज उनकी बर्थडे और हम सब जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रण किया था कि मेरे को दिलीप कुमार से शादी करनी है। जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी दिलीप कुमार से शादी हो जाए। बताइए, शादी करना उनकी ख्वाहिश थी और वो भी दिलीप कुमार से, और वो पूरी भी हुई। हालांकि दिलीप कुमार उनसे 22 साल बड़े थे, लेकिन न जाने क्या हुआ शादी को वो भी तैयार हो गए और दोनों ने शादी रचाई और उन्होंने अंत समय तक दिलीप कुमार का बहुत ख्याल रखा। सो ये कमाल की जोड़ी रही है और आज सायरा बानो अपनी बर्थडे मना रही है तो बिल्कुल उनको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सुनवाते हैं अगला गीत आपको।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई के लिए बहुत अच्छी डील चल रही है साउथहॉल ट्रैवल से। उन्हें फोन कीजिए 0208574 8410 पर। साउथहॉल ट्रैवल इज ए टोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungler and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
10: रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
11: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
12: यू मीन साथोल ट्रेवल?
11: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
12: एक बार आजमाइए जरूर साथोल ट्रेवल।
11: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
13: कॉल साथोल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Like a radio network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London? As a combined network, we can give you a competitive rate. Spread your message to a wider audience. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Or email sales at leicamedia.co.uk.
16: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: फील गुड ट्रैक्स ऑल वीकेंड विद रितु शर्मा ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।

0: क्या खूबसूरत गीत गाया है लता जी और हरिहरन ने, और इस गाने को सुनकर हरिहरन जी से वो मुलाकात याद आ गई। और मैं यही कहूंगी कि क्या बढ़िया आदमी है, डाउन टू अर्थ इंसान है बिल्कुल। और उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया था, मेरा फेवरेट वाला, जिसका वीडियो भी मैंने अपने सोशल्स पर पोस्ट किया है।
1: मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा करेंसी अपडेट इज स्पॉन्सर्ड बाय एमएफआई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 130 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by...

0: लीजिए लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना आप में से कितने साथियों का फेवरेट है ये आपके मैसेजेस बता रहे हैं। थैंक यू दिव्या जी कहती हैं, थैंक यू रितु फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। चलिए मैंने ये आपको डेडिकेट किया और आपके साथ। मालती जी थैंक यू, सलमा जी, संध्या भाव सर थैंक यू, गुरुदेव गांजा थैंक यू कहते हैं कभी अलविदा ना कहना। अब देखिए क्या कह सकते हैं, समय का जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक साथ है जब तक है। और यही कहना हमारे गिरीश जी का है कि हम तो चाहते हैं कि आप कभी अलविदा ना कहें, और मैं यही कहूंगी कि समय, जीवन और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका कुछ भरोसा नहीं होता, जब तक साथ है जब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू आप सभी के इस प्यार पर के लिए, इस मैसेजेस के लिए। वीरेंद्र चौधरी जी आप बताते हैं कि आपने कल बड़े ही धूमधाम से आजादी दिवस का समारोह मनाया और मुझे मिस किया, तो मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। चलिए आपने मिस किया, कोई बात नहीं, आपने तो एंजॉय किया ना, और आपने फोटो भी शेयर की है, बहुत बढ़िया फोटो है, लग रहा है कि आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया है। थैंक यू दिव्या आपके मैसेज के लिए। ओके, पर मैंने तो अनाउंस कर दिया। कहती है अनाउंस करने की जरूरत नहीं है ऋतु, पर मैंने तो कर दिया, आप कोई बात नहीं, वापस तो नहीं ले सकती। थैंक यू। एंड इसके अलावा हिमा हमारे साथ है, हरीश खत्री जी चलते चलते आपका फेवरेट गाना है, चलिए आपको हमने डेडिकेट किया। नरेंद्र पाठक जी धन्यवाद, जैस्मीन स्वागत है। एंड सुरजीत जी कहते हैं ऋतु मैंने तो जिम स्टार्ट किया है, अब सैटरडे संडे आज से 11 मैं जिम करूंगा, तो आपको 11 बजे के बाद सुन पाऊंगा। ये अच्छी बात तो नहीं है सुरजीत जी कि आप 8 से 11 जिम ज्वाइन किए, आप 7 से 10 भी तो कर सकते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि सेहत फर्स्ट, बाकी चीजें चलती रहती हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और चलिए कोई बात नहीं, 11 बजे ही हमें, हमारे साथ जुड़ जाइए, इसी में काम चलाएंगे, और क्या कह सकती हूँ। थैंक यू जयवंत गोर्धन दास आप हमारे साथ हैं, थैंक यू आंटी जी। एंड ऑफ कोर्स हमारे नरेंद्र बागिया जी स्वागत है आपका, ज्योति पटेल, विनोद जी, महेंद्र बजारिया जी, हमारी भारती जी, SS भोगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के मैसेजेस मिल गए हैं। और ये है, मैं आपका नाम जरूर पढ़ूंगी, आपने असमीना हो, क्या बात है, छोटा सा नाम लिखा है, मैनचेस्टर में हमारा साथ दे रही है। तो चलिए थोड़ी देर में शुरू करते हैं आज की जोड़ी नंबर 1 का सिलसिला, और आप जानते हैं ना आज की हमारी जोड़ी कौन सी है, यस, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दी जोड़ी। सुनवाती हूँ पहला गाना आपसे बस थोड़ी देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड आज आपको देगा 130 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive.
2: Yeah. Leica
1: Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation,
5: in Dubai.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
8: Southall Travel, Atoll Protected.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय,
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम,
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ
2: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
12: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
13: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
14: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
13: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
14: And you didn't pay those massive roaming charges?
13: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
15: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
16: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
17: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: ये तो था बंदिश फिल्म से गाना। दरअसल मेरी जोड़ी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी है और मैंने धर्मेंद्र का नाम ले दिया। मैं भी सोच में पड़ गई कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कहां से काम किया था। तो बेसिकली हमारी जोड़ी आज राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की है, जिनकी फिल्म से लिया था मैंने ये गाना। और ये फिल्म मैंने देखी है। इस फिल्म में डैनी का बहुत ही खराब रोल है, मतलब वो विलन बने और ऐसे खूंखार विलन बने हैं कि मुझे उनका रोल इस फिल्म में उनसे नफरत हो गई थी। और ये एक कलाकार की कलाकारी है कि वो इतना अच्छा कैरेक्टर निभाए कि आप उसमें बिल्कुल खो ही जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था इनफैक्ट ये। लेकिन ये गाना आप सबने पसंद किया है, सो थैंक यू। और ये थी हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। सत्यनारायण सैनी जी, आपने एक गाना याद दिलाया है जो फिलहाल तो हमारे सिस्टम में है नहीं, लेकिन जरूर उसे सिस्टम में डालेंगे और फिर हम आपको सुनवाएंगे।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय laikaradio.com। वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द Laika Radio ऐप एंड वेबसाइट ऑन laikaradio.com। लिसन लाइव और लिसन बैक।
2: Laika Radio
1: across Greater London and Greater Manchester. This is Ritu Sharma.
0: तो चलिए अब सुनवाते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
3: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: यस कुदरत फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था और आर डी बर्मन ने बहुत सारे गाने बनाए हैं और आई थिंक ये उनके जो बेस्ट कंपोजिशंस हैं उनमें से एक है ये गाना, जिससे कुदरत फिल्म से लिया था। और हमारे एस एस भोगल जी कहते हैं कि मेरा बहुत फेवरेट वाला गाना है, थैंक यू आपने इसे प्ले किया। और यही कहना हमारे अमर जी का है, कहते हैं ये गाना बजाकर तो आपने मेरा दिन ही बना दिया। भारती जी का भी यही कहना है। तो चलिए, जिनका भी ये फेवरेट गाना है, हमने ये गाना उन सभी के नाम पर किया। और ये थी आज की जोड़ी नंबर वन, जिसमें राजेश खन्ना थे और साथ में थी हेमा मालिनी।
1: दिस इज ऋतु शर्मा, लाइक अ रेडियो,
0: लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। और अब आपको बता दें लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के बारे में, उसका नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टाइटल है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट शोकेस। इसे होस्ट किया है दीप राजा ने। और हमेशा की तरह हम आपको याद दिलाएंगे कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका रेडियो। जिंदगी बर्बाद हो गया।
3: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Function rakha hua hai.

0: आग और शोला फिल्म से था ये गाना, जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी ने काम किया था। और ये 80s की फिल्म थी जिसमें बड़े अच्छे अच्छे गाने बने थे जिन्हें हम आपको सुनवाते रहते हैं। और उस जमाने में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, ये सब 80s में थे और जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ केबीसी के बारे में। लेकिन उससे पहले SS भोगल जी, ये गाना आपको अच्छा लगा, हमने आपको नाम के नाम किया, और हमारी ये कौन लिसनर है जिनका नाम क्या है, आपने नाम कहाँ लिखा है, कहती है ये तो जितेंद्र और श्रीदेवी का गाना है। हाँ, तो जोड़ी नंबर वन तो खत्म हो गई है ना, उसके तो मैं सिर्फ दो ही गाने सुनवाती हूँ। थैंक यू। लेकिन हाँ, आजकल मैं KBC देखती हूँ नया जो शुरू हुआ है, और अभी दो दिन पहले शायद जो एपिसोड आया था, आई डोंट नो किस दिन आया था, जिसमें रुचिता आई थी, वो एपिसोड मेरे दिल को छू गया। उस बच्ची ने, उस लड़की ने कितनी खूबसूरती से खेला और 50 लाख जीत कर गई वो। आपने देखा है क्या वो एपिसोड? देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता ही नहीं कि हमारे लिए कितनी जरूरी है, जब उसकी बातें सुनी तो लगा कि एक छोटा सा बिस्तर सोने के लिए, जिसको हम गिनते भी नहीं है कि ये हमारी सुख सुविधाओं में आता है, जब उससे उसकी बातें सुनी तो समझ आया कि वो जीवन में आज तक कभी बेड पर नहीं सोई है। अमिताभ बच्चन भी बहुत भावुक हो गए थे उसको सुनकर, और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख लगा सुनकर कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीजों का आज तक अनुभव नहीं किया है। अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आता है इस शो को देखकर। कल प्रसून जोशी आए थे, कल नहीं शायद, वो किसी और दिन आए थे अभी दो तीन दिन पहले, और उनका शो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने हिंदी के ऊपर कितनी खूबसूरती से बोला है कि आजकल लोग हिंदी जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्द मिला देते हैं। जैसे कि इंग्लिश के तो बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में मिले रहते हैं, और इस तरह से वो शब्द जो इंग्लिश भाषा में हम बोलते हैं, उनकी जगह जो हिंदी के शब्द आने चाहिए, उन्हें लोग बाग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, तो हिंदी बहुत सिकुड़ गई है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कभी यूज ही नहीं होते। और उन्होंने यही कहा कि जब आप हिंदी बोलें तो सारे शब्द हिंदी में बोलें, और उन शब्दों का अवश्य प्रयोग करें जो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जिन्हें हम भूल गए हैं कि इनका मतलब ये होता है, और वो काफी प्रचलित थे पहले जमाने में, लेकिन आजकल लोगों ने नहीं बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब हिंदी बोले तो सिर्फ हिंदी ही बोले, उसमें किसी और भाषा का मिलावट, भाषा की मिलावट ना करें। बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें सुनकर, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा हो तो देखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन फिलहाल समय हो रहा है कि मैं आपको एक और गीत सुनवाऊं, और इस बार आवाज है मुकेश जी की, और साथ दे रही है वाणी जैन।
1: लाइका रेडियो, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: का गाना है वन ऑफ माय फेवरेट्स और मेरे साथ साथ बहुत सारे साथियों का ये गाना फेवरेट है, ग्रीशी एंड गुरुदेव गांजा। मालती जी, वत्सला जी, आप में से बहुत सारे साथियों का कहना है कि ये गाना हमारे नाम कीजिए। चलिए बैक टू बैक दोनों गाने आप सबके नाम पर गए और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जो 1 बजे तक चलेगा और इस आवर में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स के साथ साथ हम खेलेंगे 3 वर्ड्स गेम भी। और आज के 3 वर्ड्स कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे भाषा की शुद्धता की। और आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे साथियों ने अपने व्यूज मेरे साथ शेयर किए हैं और आप सब ने बिल्कुल सही लिखा है। आजकल हमारी भाषा इतनी मिक्स हो गई है और उसमें अलग अलग भाषाओं के इतने सारे शब्द मिल गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली भाषा कौन सी है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी पंजाबी का भी यही हाल है, उसमें भी बहुत सारे भाषा के शब्द मिले हुए हैं और आजकल लोग उसे ही बोलते हैं। सेम हाल हिंदी का भी है। और बाकी भाषाओं को मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल यही। और हम कई बार अपनी भाषा में इंग्लिश के जो शब्द है उनका इतना प्रयोग करते हैं कि हम भूल गए हैं कि उस जगह पे कौन सा हिंदी का शब्द आता था, वो अब गायब ही हो गया है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपको शुद्ध भाषा सुननी है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शुद्ध बोलते हैं। हमारे विजय गुनोबा जी हैं जो हमेशा मुझे मैसेज लिखते हैं और बहुत ही अच्छी हिंदी में। इसके अलावा राजेश जी हैं, बसला जी और भी बहुत सारे साथी हैं और उनकी हिंदी पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा जब मैं हमारे योगी जी को सुनती हूँ, अमित शाह को सुनती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी को सुनती हूँ, कुमार विश्वास को सुनती हूँ, आशुतोष राणा को सुनती हूँ और ऐसे बहुत सारे अनेकों नाम है जो जब बोलते हैं तो मुझे भी लगता है कि अरे कितनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं। और मेरी भाषा भी सच में बहुत खराब हो गई है, बहुत मिक्सअप हो गई है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कोशिश कीजिए और वो शब्द है ना जिन्हें हम बोलते नहीं है उन्हें बस याद रखिए, उन्हें कभी कभार बोलिए ताकि वो भूल ना जाए। और अगर आप भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो आप पास ऑन कैसे करेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कोई शब्द था हमारी भाषा में। प्राउड के साथ अपनी भाषा बोलिए और शुद्ध बोलिए। चलिए बढ़ जाते हैं इसी नोट के साथ आगे और आपको बता देती हूँ आज के 3 वर्ड्स कौन से हैं। तैयार हैं आप? चलिए फिर, ये 3 वर्ड्स हमेशा ही मैं बॉलीवुड के गाने से लेती हूँ और आपको गाना पहचानना होता है। पहला वर्ड है बोलेंगे, दूसरा वर्ड है बात और तीसरा वर्ड है देखो। बहुत सुंदर गाना है और काफी प्रसिद्ध भी है। बोलेंगे, बात, देखो। 1963 में आई थी ये फिल्म। एसडी बर्मन का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी की आवाज है। कौन सा गाना है सोचिए सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। और अगर जवाब पता है तो भेज दीजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20.
0: So I repeat once again, पहला वर्ड है बोलेंगे, दूसरा वर्ड है बात और तीसरा वर्ड है देखो। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ये 1 pound आपको देगा 130 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
4: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their seven children as they navigate life between two cultures.
3: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए, हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio Greater Manchester a better station for you. Leica Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com. This is Leica Radio Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. Leica Radio Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
1: Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 8222.
11: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इस फिल्म के सारे गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं और इस फिल्म का एक गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। साहिर लुधियानवी ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक, इसलिए उनका लिखा हुआ ये गाना जो काफी दिन से नहीं बजा था आज प्रोग्राम में शामिल किया और आपने इसे पसंद भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए,
1: ये है लाइका रेडियो।
0: अब शुरू कर देते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला। आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं क्योंकि हमारा 3 वर्ड्स गेम चल रहा है और एक आध को छोड़कर ज्यादातर सबने गाने को सही पहचान लिया है। तो गाना कौन सा है और किन्होंने सही पहचाना है मैं बताऊंगी, लेकिन पहले सुनवाऊंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
2: This is Leica Radio.
3: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
3: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

0: यसु बहुत ही खूबसूरत गाना। हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, फिल्म का नाम काला बाजार, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं हमारी तोशी जी के नाम पर, और साथ ही साथ विजय गुडूरी जी जो कि सटन में प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उसके अलावा जिन साथियों को ये गीत अच्छा लगा है, आप सबके नाम पर जाता है। ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय laikaradio.com। वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द Laika Radio ऐप एंड वेबसाइट ऑन laikaradio.com। Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
1: This is Ritu Sharma.
2: Laika Radio.
0: और आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनवाने से पहले, मैं आपको याद दिलाती चलूं कि भाई हम सभी के फेवरेट सुनील ग्रोवर लंदन आ रहे हैं। जी हाँ, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ जो हमें खूब हंसाते हैं, सुनील ग्रोवर लंदन में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं एट ओवो अरीना वैमली में ऑन थर्सडे 29 अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटियोली अरीना ऑन सैटरडे 31 अक्टूबर। टिकट्स अवेलेबल हैं AXS पर, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर पर, और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं Laika Radio Network।
1: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा।
2: Laika Radio।
3: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Tilda Basmati Rice। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद Tilda।

0: अब्दुल्ला दीवाना।
1: जी हाँ, ये तो कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और देखिए इस कहावत पर हसरत जयपुरी ने कितना सुंदर गाना लिखा है जिसे आपने अभी सुना, और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर और पद्मिनी की एक सुपर टूपर हिट फिल्म जिसमें म्यूजिक था शंकर जयकिशन का, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और अब आपको बताती चलूं कि हमारे कौन साथी हैं जिन्होंने सही सही गीत को पहचान लिया है, आज के थ्री वर्ड्स वाले गाने को सही सही पहचान लिया है। तो उनके नाम हैं महेंद्र बजारिया जी, दामिनी बेन, उल्लास, दिनेश पोपट जी, मनीषा शाह, रोशनी जी, सरोज जोशी, मीना शाह, नरेन पटेल, वसला कुकी, गीता हर्ष जोशी, अमित पटेल, दिव्या हैरोसे, विजय गुडोरी जी, स्मृति कैंट से, हाजरा जी एंड हमारी तोची जी। आप सभी ने गाने को सही सही पहचाना है, और बाकी जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं वो शायद गाने को आज नहीं पहचान पाए हैं। तो फिकर नॉट, अभी थोड़ी ही देर में मैं बजाने वाली हूँ कि वो गाना कौन सा है। बड़ा ही पॉपुलर गाना है, लेकिन उस गाने को बजाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए। उनके पास बड़ी ही कॉम्पिटिटिव हॉलिडे डील्स हैं दुबई के लिए। फोन कीजिए उन्हें 0208-574-8410 पर, एंड साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: South All Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: South All Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
6: South All Travel can take you there.
7: South All Travel. At all protected.
8: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: करो। जी हाँ, विजय आनंद की फिल्म जिसे बनाया था विजय आनंद ने, देवानंद लूतन हीरो हीरोइन थे, एसडी बर्मन का म्यूजिक, और ये था हमारे आज के थ्री बर्ड्स गेम वाला गाना। एसएस बोगल जी एंड गिरीश जी, आप दोनों ने भी इस गाने को सही पहचाना, लेकिन थोड़ा बाद में।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 पाउंड आपको देगा 130 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LEICA. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 108.5 pounds per gram.
2: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
3: LEICA Radio.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहे।

0: हाँ मेरी ओर से भी बाय बाय
1: बाय बाय
0: बाय बाय. अब हम कल तो नहीं, हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, लेकिन इस शो में मेरे बाद अनुराग होंगे लाइका गोल्ड पर, मैनचेस्टर पर लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगे जय, एंड लाइका रेडियो मिटेंस पर होंगी आनंदी. आप बहुत सारा ख्याल रखिए अपना.

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे
1: Sunday Feel Good with Jace Abe. Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.
2: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.

0: Zabe on Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Yeah, so £1 in British sterling can get you up to 129 Indian rupees. Don't forget to exchange and branch online or on the SBI Yono mobile app. T's and C's apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. Leica Radio. Sunday Feel Good with Jay Zabe.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए
10: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज जेसे ऑन लाइका रेडियो

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.
2: Heartbeat

0: Yeah.
1: Sunday Feel Good with Jace Abe. Like a radio.
2: Yes, you're listening to the Sanjay Show with your host, Johan Zabe, aka Jay. Just coming up to 12 minutes past 3, 23rd of August, Sunday. And it's the first weekend of the Premier League. And today's games, it's going to be very interesting this year, isn't it, with the Premier League, because so much happening with different teams. For example, Brighton currently leading 4-0 against Aston Villa. No one predicted that. And Manchester City losing at home to Bournemouth 1-0. No one predicted that either. And we've got a big game coming up after 4 o'clock, after my show. 4:30, it's Newcastle versus Liverpool. That's 4:30 kickoff. And who can forget, yesterday Manchester United had a terrible start to the season. 2-0 away defeat to Hull City. Everton won 2-0 against Crystal Palace. Ipswich Town 2-1 against Sunderland. And then Leeds getting a good away win against Nottingham Forest 1-0. Brentford 3-0. Again, another surprise win. 3-0 against Tottenham Hotspur. That happened yesterday. It's your last chance to win the Atif Aslam tickets. I'll be announcing after the break. All you need to do is send the word Atif, your full name and email address. I'll be giving away two tickets to one lucky winner. A winner after a short break. So, last chance to answer. Get entering 11th of September. Atif Aslam, the legendary Atif Aslam, A Arena. So make sure you enter.
3: Like our radio.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
5: वेडिंग्स सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
7: रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
8: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल
9: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल
8: यस देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर
9: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल
8: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए
10: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250 दैट्स 0161 250-1250
11: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
12: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
11: Rich, authentic taste every single time.
12: Royal Chai, brewed for business.
11: Email now info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
13: Caratino Better Ghee. The healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative.
14: अपने कारोबार को across greater Manchester पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर ईमेल sales@laikamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161-250-8222 दैट इज 0161-250-8222 लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन
1: इट्स समर On the Leica Radio Network. Your Sanjay Show with Jay Zabe.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, ब्यूटीफुल गाने, और दोनों गीतों में एक आवाज शामिल थी और वो आवाज के की। सिनेमा इंडिया एंड सिनेमा म्यूजिक रूम रिमेम्बर्स के टुडे। के गेव अ जनरेशन इट्स सॉन्ग्स ऑफ फ्रेंडशिप, फर्स्ट लव, हार्टब्रेक एंड सॉलिट्यूड विद वॉइस दैट फेल्ट इंटीमेट इवन व्हेन हर्ड बाय मिलियंस। नाम कृष्ण कुमार कानत। प्लेबैक सिंगर रहे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट रहे, हिंदी सिनेमा और इंडियन म्यूजिक उन्हें आज याद कर रहे हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग प्लेबैक वॉइसेस ऑफ हिज जेनरेशन, और आज उनकी 58th बर्थ एनिवर्सरी पर 23rd of August 1968 में उनका जन्म हुआ था, और बहुत जल्द 31 मई 2022 में उनका देहांत। Popularly known as KK, was an Indian playback singer. KK is regarded as one of the most prolific playback singer in India, noted for his versatility in a variety of music genre. And he recorded songs in Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam language and bahut si dusri languages mein bhi. KK was a recipient of several awards, and including 2 Screen Awards, along with 6 Filmfare Awards nominations. After beginning with the advertising jingle, you know, jingles mein gaya karte the, KK merged nationally with his 1999 album called पल यारो, उनका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, एंड बिकेम एंड्योर एंथम ऑफ फ्रेंडशिप, फेयरवेल एंड मेमोरी। तड़प तड़प के इस दिल, ये आपने गीत सुना, दिल दे चुके हम, दिल दे चुके सनम ने में गाया था उन्होंने, एंड ही वेंट ऑन टू क्रिएट मेमोरेबल सॉन्ग्स इंक्लूडिंग आंखों में तेरी, क्या मुझे प्यार है, जरा सा, खुदा जाने, दिल इबादत कर रहा है, तू ही मेरी शब है, कोई कहे कहता रहे, फ्रॉम दिल चाहता है, ओ हमदम सुनियो रे साथिया, काश ही गाने में आज के प्रोग्राम में शामिल कर पाती। डोला रे डोला देवदास का गाना, 10 बहाने करके ले गए दिल, क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे का गीत, तू ही मेरी शब है, देन खुदा जाने, बचना या हसीना इस फिल्म का गीत, एंड जरा सा जन्नत फिल्म का गाना था, सजदे वॉज अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग खट्टा मीठा से, एंड पी आई ना आशिकी 2 का गाना। ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं, पर आज के प्रोग्राम में मैंने 2 गीत उनके गाए हुए मैंने शामिल किए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इन दोनों गीतों को पसंद किया। ही डाइड वेरी अनएक्सपेक्टेडली ऑन 31st of May 2022 आफ्टर परफॉर्मिंग एट अ कॉन्सर्ट इन कोलकाता, एंड द सॉन्ग However, never really left. इनके गीत हम हमेशा सुनते रहेंगे और इसी तरह से याद करते रहेंगे। ये थी छोटी सी श्रद्धांजलि केके के लिए, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर थे, एंड मुझे भी उनकी आवाज बहुत पसंद थी। इनफैक्ट एक दफा मेरा मिलना हुआ था, मैंने इन्हें इंटरव्यू नहीं किया था, लेकिन मिलना जरूर हुआ था व्हेन ही केम टू अवर टेलीविजन स्टूडियो एंड विद सुनिधि चौहान, और इनका लाइव कॉन्सर्ट था, उसके दौरान ये दोनों आए थे और इनसे मुलाकात हुई। वेरी प्लेसेंट, वेरी प्लेसेंट बॉय। चलिए, जिंदगी ऐसी है, जीवन आना जाना है या हर कोई आता जाता है, अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कब आता है। अब आपसे पूछ लें, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को एंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जी, और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी पसंद आपकी पसंद बनेगी। आइए, जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी मैसेजेस भेज दिए हैं, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, एंड वेलकम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 130 rupees in Indian currency. And don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
6: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together, it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales at leicamedia.co.uk. Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at leicaradio.com.
12: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
13: LEMFI means quicker and safe way to send money.
14: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
13: LEMFI means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
11: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
1: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
16: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
16: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
16: Leica Radio.

0: Another beautiful song from the film Amrapali. देखी थी फिल्म वैजयंती माला पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और इनफैक्ट मधुमती का गाना भी उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ था. व्हाट अ कोइंसिडेंस. वैसे उनकी फिल्मों के सारे गाने नहीं है.
1: तड़प ये दिन रात की कसम.

0: 1965 की फिल्म थी जिसका नाम था पूनम की रात, वन रेयर हिट ऑफ मोहम्मद रफी साहब. उम्मीद करती हूँ आपके दिल को भी भाया होगा.
1: This is Laika Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: One performer.
3: के सामने तो पोषण से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
4: Countless personalities.
5: जिंदगी बर्बाद हो गई.
1: A whole universe of entertainment.
6: Nanda function रखा हुआ.
4: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October OVO Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Laika Radio Network.
7: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected. Power your business's growth by advertising here on Laika Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@laikaradio.com.
9: Yeah, Laika.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों ही गीत बड़े जबरदस्त थे। ये गीत मैंने फिल्म डांसर से चुना था, डांसर जिसे डायरेक्ट किया था किशोर व्यास ने, एंड इस फिल्म में काम किया था अक्षय कुमार ने और साथ में थी एक ब्रांड न्यू हीरोइन जिनका नाम था मोहिनी, उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। दिलीप ताहिल ने भी इस फिल्म में काम किया था एंड संगीत तैयार किया था किसने इस फिल्म का, आनंद मिलन ने। और मैंने आज के प्रोग्राम में क्यों शामिल किया ये भी बता दूं, इसलिए शामिल किया क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 1991 में। वैसे तो एक गाना 1990s का होता है और एक 80s का गाना होता है, क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी इसलिए मैंने आज इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया। और पहला गीत था इस आवर का फिल्म जीत से, और कल भी मैंने जीत का एक गीत आप तक पहुंचाया था और मैंने कहा था आई एम गोइंग टू प्ले अनदर सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जीत, और उसका रीजन ये है कि ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1996 में रिलीज हुई थी। राजकमर साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी, स्टोरी भी उन्हीं की थी एंड स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। साजिद नाडियावाला ने इसे प्रोड्यूस किया था। सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी ने इस फिल्म में काम किया था। संगीत कार थे नदीम श्रवण की जोड़ी और समीर जी ने लिखे थे इस फिल्म के गीत, और सारे के सारे गाने मुझे इस फिल्म के बहुत अच्छे लगते हैं। एक गीत आपने सुना तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, एंड यारा ओ यारा वाज अनदर गीत। देन सांसों का चलना मैंने कल प्ले किया था आपके लिए, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो भी गाना बड़ा जबरदस्त। एंड दिल का क्या करें साहेब एंड साजन घराना, वो भी गाना बहुत अच्छा था। सो बारी बारी सारे गाने मैं प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगी। और प्रोग्राम के इस आवर के बाकी के जो गाने हम सायरा बानो जी के नाम करते हैं जो आज अपना जन्म दिवस मना रही हैं, एंड 23 अगस्त 1944 में उनका जन्म हुआ था। अब भाई मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं और अपनी अपनी फरमाइशें भी लिख रहे हैं कि हमें सायरा जी की इस फिल्म का गीत सुना दें, तो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, इसकी फरमाइश बहुत आई है। लेकिन ये गाना 20 तारीख को हमारे यहाँ से आपने सुना, आज सिर्फ 3 दिन हुए हैं, हमारी पॉलिसी तो आपको पता ही है, तो आज के वे प्रोग्राम में वो गाना मैं शामिल नहीं कर पाऊंगी। बाकी जो भी गीत मैंने चुने हैं आप पसंद जरूर करेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भी अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज आपका 1 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जो है वो आपको दे सकता है 130 रुपीज। आप एक्सचेंज कर सकते हैं जाके ब्रांच में, ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
4: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
5: Sochta hu ke wo kitne masoom the.
3: Our Atif Aslam brings his unforgettable sound
4: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
3: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
4: Official radio partner, Laika Radio, Greater Manchester.
5: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
6: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
5: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
13: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18 to 01 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
1: This is Laika Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Laika Radio Manchester or download the Laika Radio mobile app.
14: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
4: This is Laika Radio,
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Laika Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
4: This is Laika Radio,
1: Greater Manchester.
4: It's Laika Radio.

0: साइरा बानो 23rd ऑफ अगस्त 1944 में मैसूरी में इनका जन्म हुआ था टू एक्ट्रेस नसीम बानो एंड प्रोड्यूसर मियां एहसान उल हक और आज अपना बर्थडे मना रही है हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई हो बहुत कुछ कहना है लेकिन क्या करें
1: फील गुड ट्रैक वाज ब्रॉट टू यू बाय likeradio.com वी आर लाइव अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर एंड ऑनलाइन वाया द लाइका रेडियो ऐप एंड वेबसाइट ऑन likeradio.com लिसन लाइव और लिसन बैक
2: दिस इज लाइका रेडियो
0: और भाई यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन है प्रोग्राम में यस कल भी दो टिकटें जीती थी किसने जीती थी हर्षद लाड आई थिंक और आज कौन जीतता है मुझे मालूम नहीं लेकिन तैयार हो जाइए अपनी अपनी एंट्री देने के लिए लाइक अ रेडियो नेटवर्क एंड सून टू लॉन्च स्टेशन लाइक अ रेडियो गजल टीम अप विद अनुज चोपड़ा फाउंडेशन फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद गजल्स एंड एलिगेंस फीचरिंग लेजेंडरी सिंगर अनूप जलोटा जी ऑन संडे 30th अगस्त एट क्वींस थिएटर में ये प्रोग्राम होने वाला है रॉमफर्ड में है ये क्वींस थिएटर और शो स्टार्ट होगा 6 बजे वी हैव टू टिकट्स टू गिव अवे सिंपली सेंड द वर्ड गजल्स फॉर यू टू बी इन टू विन सो जल्दी से लिखकर भेजिए गजल्स GHAZALS गजल्स लिखकर भेजना है आपने विनर टिकट्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस ऑन द इवनिंग ऑफ द शो एंड योर नेम एंड नंबर विल बी यूज फॉर योर आईडी पर्पस सो अपना प्लीज आईडी भी साथ में लेकर जाइएगा एंड ऑल्सो मुझे अब जब एंट्री दें अपनी तो अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा एंड साथ में अपना एड्रेस भी एंड फोन नंबर तो भेजेंगे इफ यू डोंट विन यू कैन स्टिल बाय द टिकट्स फ्रॉम क्वींस -theater.co.uk से डोंट फॉरगेट द यूकेस फर्स्ट गजल रेडियो स्टेशन लाइक अ रेडियो गजल्स लॉन्चेस सून सो उसका भी इंतजार कीजिए और कंपटीशन में विन करने का भी इंतजार कीजिए और अगर टिकट बाय करनी है तो queens-theater.co.uk पर जाकर टिकटें बुक करें
1: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो
0: हां जी यहां पर एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ साझा करनी है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ आने वाला है नियर फ्यूचर में आतिफ असलम रिटर्न्स टू द यूके फॉर अ स्पेशल वन ऑफ कॉन्सर्ट एट AO अरीना मैनचेस्टर ऑन फ्राइडे 11 सितंबर को टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है लाइका रेडियो और रागसन लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागसन डिटेल्स एट likeradio.com
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: जी हाँ ये गीत मैंने चुना है from the film Zameer. इस फिल्म में भी हीरोइन थी कौन? सायरा बानो जो आज अपना बर्थडे मना रही है.

0: तो फिर क्या होगा, आओ प्यार करें। इस फिल्म से चुना हुआ गीत आपने सुना। इस फिल्म में सारा बानू का साथ दिया था जय मुखर्जी ने एंड संगीतकार थी उषा खन्ना। बहुत प्यारा गीत रजिंदर कृष्ण साहब ने लिखा था। और सायरा बानू जी की कुछ एक फिल्मों के गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इनका फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म जंगली से, 1961 की फिल्म थी जिसमें उन्होंने शमी कपूर के साथ पेयर किया था। ये फिल्म उनकी पहली बड़ी हिट थी एंड शी रिसीव फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन। शी रिसीव 3 मोर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन फॉर शागिर्द इन 67, दीवाना इन 67 एंड सगीना इन 1974. She went on to be part of many successful films such as Bluff Master, I Milan Ki Bela, Padosan, Victoria 203, Hera Pheri, Gopi, aisi bahut sari filme. And then Saira Banu ne apni filmi career ke dauran hi Dilip saab se shaadi kar li thi aur dono ko pyar aur shaadi ke bahut charche hue the kyunki unki age mein kafi antar tha. Anyway, Saira ji ko aaj ka din bahut bahut mubarak.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you at this minute 130 rupees and 57 paisa. Pakistani rupees 378.63, Sri Lankan rupee 449.46, Bangladeshi taka 166.83 and Afghani is 88.90 and US dollars 1.36.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: It's £108.55 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: LIKA Radio. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.

0: to the best destinations in the world.
1: लंदन, मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स का वेदर आपको बता दें. सनी इंटरवल्स एंड लाइट विंड्स चल रही हैं मैनचेस्टर में भी एंड इन लंदन. यहाँ का टेम्परेचर हाई है 23 डिग्री, तो मैनचेस्टर में 21 है. और कल यहाँ रहेगा सेम सिमिलर, कभी धूप कभी छांव और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस. मिडलैंड में कैसा है, थंडरी शावर्स चल रहे हैं और कल टेम्परेचर और भी डाउन है, 17 डिग्री रहेगा. सो अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए ना. अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गई है, सर्दी शुरू हो रही है, तो अब मौसम बदलते हैं जब, तो मुश्किलें भी आ जाती हैं ना, बीमारियां भी आती हैं. तो आप अपने आप को बचा कर रखिए और अपने दिल के मौसम को ठीक ठाक रखिए.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. Sarita Samawal.
1: प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में हमने कदम रखा है. इट्स 3 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock. वेरी गुड इवनिंग टू यू इफ यू जस्ट जॉइन मी. लास्ट 2 आवर्स आपने मिस कर दिए तो ऐसा मत किया करें ना, मैं तो सिर्फ वीकेंड पे आती हूँ. 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा और आपका मिलना होता है. तो सुनते हैं बैक टू बैक दो गाने.
0: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, Greater Manchester, a new Asian sound for the northwest of England. 963 AM and 1377 AM. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica. Sarita Sabawal.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने दाग द फायर से चुना था, ब्यूटीफुल सॉन्ग जसपिंदर नरूला एंड सुखविंदर सिंह की आवाज है. और दूसरे गीत में किशोरदा की आवाज सुनी आपने, राजेश रोशन जी का संगीत. फिल्म का नाम था याराना, 1981 की फिल्म. दोनों गीत सुनकर आप झूम रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और आप मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर भेज रहे हैं, जिसके लिए तहे दिल से सरिता हमेशा आप सबकी शुक्रगुजार होती है. तो बस इस आवर में भी मिले जुले गाने हैं. लेकिन मैं जब घर थी तो मैं सोच रही थी कि हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारी रील्स देखते हैं. देखते होंगे आप भी, ज़रूर देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ, जिन्हें हम अवॉइड कर ही नहीं सकते अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं. तो इतनी सारी रील्स आती हैं और स्पेशली आजकल छोटे छोटे बच्चों की बहुत आ रही हैं, छोटे छोटे जोक्स हैं. फिर कुकरी की इतनी ज़्यादा आती हैं कि देन हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ की भी बहुत सारी आती हैं. आपको यहाँ पेन है तो ये कीजिएगा, वो कीजिए, एंड खाना बनाने के लिए कितनी अलग अलग तरह की रेसिपीज आती हैं. क्या आप मुझे बताएंगे कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं? क्या आप कभी अपनी कुकिंग को छोड़कर वो फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं बनाऊँगी, फिर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं हमेशा सोचती हूँ कि इतनी सारी रील्स होती हैं, इतने सारे मैसेजेस होते हैं आजकल, तो क्या आप सबको सुनते हैं? स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के जोक्स आ रहे हैं आजकल, वो एआई क्या है, एंड वो बहुत अच्छे भी लिखते हैं. लेकिन साथ ही मैं सोचती हूँ माय गॉड, इसमें से कौन कौन से याद रखो, किसे हम भूल पाएं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन मी, वेलकम. लेकिन आप देर से आए हैं, नेक्स्ट सैटरडे से प्लीज़ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा साथ दीजिएगा. 7 बजे के बाद आ रहे हैं सैंडी शाह. सैंडी आपके लिए विंटेज गोल्ड में पुराने पुराने इतने खूबसूरत गीत लेकर आते हैं, जिनके साथ तो पता नहीं कितनी यादें आपकी जुड़ी होंगी, बताइएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर SBI के जरिए पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो 1 British sterling pound कैन गेट यू टूडे 100 and up to 130 rupees. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.

0: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
1: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
7: Yeah, yeah, yeah, like

0: क्या बात है, क्या बात है। मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ गीत और कलम का कमाल था साहिर साहब का। साहिर साहब का लिखा गीत आपने सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया है। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। अभी तो मैंने बताना है कि अनूप जलोटा जी का शो फ्री में देखने कौन जा रहे हैं। बस कहीं नहीं जाने का, अभी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए।
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Leica Radio.
2: Greater Manchester.
1: Leica Radio.
0: एक और गाना मुकेश जी की ही आवाज में, फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर। और इस फिल्म में तो सायरा बानू भी थी, जो आज अपना बर्थडे मना रही है।

0: the Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: फरजाना लिखती हैं कि सरिता जी मैं रेसिपीज उसी वक्त ट्राई करती हूँ, बाद में तो भूल ही जाते हैं। और हरप्रीत जो वैंकूवर में हमारे प्रोग्राम सुन रही हैं, वो लिखती हैं कि हाँ मैं हेयर स्टाइल भी नोटिस करती हूँ और हेयर स्टाइल भी वैसे ही बनाती हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बहुत काम की चीज है जो ये रील्स बनाकर भेजते हैं और आप उन्हें फॉलो भी करते हैं।
0: ये है लाइका रेडियो।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: रफी साहब की आवाज में गाया हुआ फ्रॉम द फिल्म आज और कल से चुना गीत।

0: और बता दूं कि ये गाना भी लिखा था साहिर साहब ने ही, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस गीत के बारे में और आज के प्रोग्राम में इस गीत ने जगह ले ही ली। अब कंपटीशन की बात भी कर लें। कंपटीशन जो अनूप जलोटा जी का शो देखने जा रहे हैं उसमें आज विनर बनी है मिस्टर भावसर। भावसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का, और आपने सारी डिटेल्स मुझे लिखती हैं जो हमें चाहिए थी, और आपको टिकट्स वहीं गेट पर ही मिलेंगी, लेकिन अपनी आईडी ले जाना मत भूलिएगा।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथहॉल ट्रैवल।
0: Right, Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai, and contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: One performer.
3: Countless personalities.
2: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
2: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live. Live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
6: Celebrate 30 years of East is East as Ayub Khan Din's iconic story returns to its northern roots at the Octagon Theatre in Bolton.
7: Don't miss Bhaskar Patel leading a stellar cast in this hilarious and heartfelt comedy about the Khan family. Set in Salford back in 1971, follow husband George and his wife Ella and their 7 children as they navigate life between two cultures.
6: See East is East from Friday 4th September to Saturday 3rd of October. Book now at octagonbolton.co.uk.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Leica Radio Network, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन।
10: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
1: Bollywood's biggest 90s songs, nonstop.

0: मेरे हमद मेरे दोस्त 1968 की फिल्म थी और इस गीत को शामिल करने की एक वजह ये कि ये फिल्मी आज ही के दिन 23rd of August 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अमर कुमार जी ने एंड फिल्म में काम किया था धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, मुमताज थी इस फिल्म में एंड रहमान के साथ साथ ओम प्रकाश जी भी थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का खूबसूरत सा संगीत था और जब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के गीतों तो उनका म्यूजिक हो तो या मजरू साहब ने उनके गीत लिखे या आनंद बख्शी साहब ने। सो इस फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। और इसी दौरान मुझे हरप्रीत ने मैसेज लिखा, ओ मैं वैंकूवर में हूँ, इट्स ओनली 10:45, प्लीज ना जाओ। हाँ मैं नहीं जाऊंगी तो सैंडी जो दरवाजे में खड़ी है वो कैसे अंदर आएंगे, हॉट सीट पर बैठेंगे, तो उनका भी इंतजार रहता है ना, है ना, होता है ऐसा ही। तो मेरा साथ आप देते हैं, मुझे अभी अभी सादिया जी ने भी मैसेज भेजा और कहती हैं कि मैं भी बहुत सी रील्स देखती हूँ इस तरह से जो आती हैं सोशल मीडिया पर, मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ जब वो दिखाते हैं ना कि कपड़े किस तरह से तय करने चाहिए। सो यस आई दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, लगता है बहुत ईजी है, मैं कर लूंगी, कहती है मैं बहुत दफा देखती हूँ और पर वैसे तय नहीं होते जैसे कि वो एकदम फोल्ड करते हैं और इतने खूबसूरत कपड़े इतनी अच्छी तरह से तय करके स्टैक कर देते हैं। सो ये सोशल मीडिया पे जो डालते हैं हेयर स्टाइल रेसिपीज एंड हेल्थ टिप्स देते हैं, तो जो भी आप ट्राई करते हैं क्या उससे आपको फायदा होता है, इसके बारे में मैंने आपको पूछा था और आपने मुझे बड़े सारे जवाब भी दिए जिसके लिए तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। जैस्मीन भारत जी, पाके चियांग, आपका भी, संध्या जी, फरजाना जी, हरीश रुड्डा जी, बहुत सारे मैसेजेस थे, विजय गुदरे एंड जो, दीपक वोरा जी, अर्जन जी, निर्मल एंड कीरत जी, संतोष इनहैरो, हंसा वोरा जी, अरुणा जी, दीपेश, दिनेश पोपट जी, भरत गंगाराम जी, रानी ऑफ स्लो, तोची जी, महेंद्र पटेल, मिसेस शेख, सुदेश टक्यार, करसान पिंडोरिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्राणी दत्ता, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी लेकिन मैंने सबको जवाब जरूर दिया है व्हाट्सएप पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सैटरडे और मेरे बाद यहाँ आ रहे हैं सैंडी शाह, लेकिन मैनचेस्टर रेडियो पर आप सुन पाएंगे जेजी जीको और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रहे हैं नीरज। बाय फॉर नाउ।
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai, on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
5: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
7: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavour. Hira, king in quality, king in taste.
8: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
10: Advertise here now. Call 0161 250 822 or email sales@likeradio.com. Sarita Summerwall with your weekend classics.

0: I'll get back to you right away.
1: Leica Radio.
0: Leica Extra Podcast Update.
2: And Deep Raja has spoken to Hiten Mehta OBE, Chief Executive of British Asian Trust, about the organization's work, and the new episode of podcast number 30, British Asian Trust Showcase, as hosted by Deep Raja, is out. From the royal origins to major fundraising events, we dive into the story behind the trust and we learn how the organization's work turns ideas into lasting impacts and how it's reached 18.8 million people across South Asia. Leica Extra Podcast is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Leica Radio.
3: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: यू मीन सॉफ्ट हॉल ट्रेवल?
5: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्ट हॉल ट्रेवल.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: कॉल सॉफ्ट हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
8: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
9: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai, on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Hi, it's Ankit Tiwari.
11: Hi, it's Ankit Tiwari.
10: Keep listening to Leica Radio.

0: Monday nights, Feeling Good with Jazzy J on Leica Radio, Greater Manchester.
1: ठंडा कुछ नहीं, सब गरम ही गरम है, अंगारे
2: अंगारे।

0: है
1: लाइका रेडियो।
0: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation.
9: In Dubai.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
11: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
13: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
14: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: हाय, मैं हूँ रुबीना खान। सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1-4 बजे तक द मैगजीन शो में
1: सुनो ना संग मरमर।
2: जैसे है रुबीना खान जी, वैसे है ये खूबसूरत गाना। दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रुबीना जी। Her show is absolutely amazing as well. You guys need to check in. But this is a special shout out for all you Arijit Singh fans out there. Ye khoobsurat gana jab aaya tha 2014 mein, people didn't know who Arijit Singh was. But this song made a special place in everyone's hearts.

0: Africa Radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
5: T's and C's apply.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट. हर वक्त हर जायके के लिए.
0: Punjab, the biggest tunes.

ये है लाइका रेडियो। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।